0: TBS 아이나 쌍만다호
1: रंगबहार रंगबहार
2: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
1: वर्ष पेन
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: जनता केबल पांच दशक देखी
1: सेनेटरी सामान
2: अधिकारी
1: बेजर पेंट
2: अधिकारी
1: धारा फिटिंग

गजुरीमा अब टीडीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अचम्म को डील गजुरी आदर्श चोक में आए तपाईले जुनसुके ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करें ब्रांड न्यू टीवीएस चर्ता पाउनु हुने छ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवीएस को पिन को चाबी अथवा 100% सम्म क्याशबैक ये मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन में कतै नपाइने खतरै वैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु बैंक सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कशप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: मात्र टीवीएस आई ना संबंध हो।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्ष पेंस से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: वर्ष पेंस
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

गजुरी नामक टीवी अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अचम्मैको डील गजुरी आदर्श चोक में आएर तपाईले जुनसुकै ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज गरेर ब्रांड न्यू टीवी सट्टा पाउनु हुनेछ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवी को सिम को चाबी अथवा 100% सम्म क्याशबैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन में कतै नपाइने खतरै भ्यालुएसन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफ टाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्

गजुरी में आवाज टीवीएस अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अचम्मै को डील गजुरी आदर्श चोक में आए तपाईले जुनसुकै ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करे ब्रांड न्यू टीवीएस चढ्दा पाउनु हुने छ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% सम्म क्याश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतै नपाइने खतरै भ्यालुएसन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: TBS 아이는 쌍난다 호.
1: 에 반가, 아와 카트만두 샤크만두 고양이들 나 니다레 달려오다, 아티카 라아라 컴퓨터 킨네 보이자 예태 딘초.
2: 아니 뭐야, 컴퓨터 사이 까 킨초 또.
1: 우다 헤르다 반가,
2: 헤리에 아초다 마마.
1: 예데 헤르다 반가.
2: 퍼티트 컴퓨터 센터. 여하 컴퓨터 랩탑 프린터 UPS 로가에 컴퓨터 선물들 선포라 사만 파인차. 뭐로 번너스터 발라 키에 차인차. 마마.
1: 반가, 예 헤르 니다레 달려오다, 아티카 라아 딘초 컴퓨터 예태 기나, 아
3: जस्तो खोजे त्यस्तै कम्प्युटर पाइने, बिग्रियो भने पनि बनाइदिने, त्यसैले अन्त हैन, कम्प्युटर चाहिए धादिङबेसी बीच बजारको प्रतीक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने।
4: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रतीक कम्प्युटर भएपछि सधैँ झुक्क। फोन नम्बर
3: 010-5907-9975-10-97778।
5: रंग बहार रंग बहार
6: वर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
5: वर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
6: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
5: वर्जर पेंट
7: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

गजुरी में अब CVS अपग्रेड हाने लाये भाग्य ने अपग्रेड हुने अच्छा मई को डील गजुरी आदर्श चौक में आए र तो पहले जुनसुके ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करे र ब्रांड न्यू TVS चौड़ा पाउन हुने था 10 लाख सम्म को कैश डिस्काउंट TVS को चुन को चाबी अथवा 100% सम्म कैशबैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5% सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरै वैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र TVS लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

गजुरी में अब चीजें अपग्रेड हाने लाये भाग्य ने अपग्रेड होने अच्छा माई को डील गजुरी आदर्श चौक में आए र तपाईले जुन सुके ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज गरेर ब्रांड न्यू टीवीएस चौड़ा पाउनु हुने छ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% सम्म क्याश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन में कतै नपाइने खतरै भ्यालुएसन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

गजुरी नामक टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अचम्मै को डील गजुरी आदर्श चोक में आए तपाईले जुनसुकै ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करेर ब्रांड न्यू टीवीएस सर्दा पाउनु हुनेछ 10 लाख सम्म को क्याश डिस्काउंट टीवीएस को सुन को चाबी अथवा 100% सम्म क्याश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतै नपाइने खतरै भ्यालुएसन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफ टाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: TBS 아이는 쌍만다호.
1: 엄마, 몰라 쇼핑 기니 보이스 디는 더. 팀라 쇼핑 기나 아스티 먹을 보이스 데 거이나.
2: 뛰어 더 파티 사진이 버더 마을에 그스트 루프리케이트 주스 같은 발라야 라서 어둘래 기타.
3: 아이나, 팀에로 어기 대기 기나 저그라 걸래죠.
1: 기나 오느니. 어스티 먹을 기니고 저팔 아들 파티 보내로 보이스 막대지.
3: 러 바이거 알라나가라 소리 팀라 뭐 보이스 아딘수. 따라 주타 쇼핑 기나 자이 키스나 서플라이스 부사르 바자르 마자 와이.
2: 피나니 바바
3: 피나키 त्यहाँ बच्चादेखि बुढा सम्मलाई हुने लेडीज तथा जेन्स आइटमका आकर्षक जुत्ता चप्पल सुपथ मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल बिक्री गरिन्छ नि
2: हस बाबा
4: कृष्ण सप्लायर्स धादिङ बिस्तिक पुछार बजार प्रोप्राइटर कृष्ण तिबलसिना
5: सम्पर्क मोबाइल 97140131429
6: ए भान्जा अब काठमाडौँ साठमाडौँ गइँदैन निधार यता ल्याउ त टिका लगाएर कम्प्युटर किन्ने पैसा यतै दिन्छु
7: अनि मैले कम्प्युटर चाहिँ कहाँ किन्छु त
6: उता हेर त भान्जा
7: हेरिरहेको छु त मामा
6: के देखौ त भान्जा
7: प्रतीक कम्प्युटर सेन्टर यहाँ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर युपिएस लगायत कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान पाइन्छ बरु भन्नुहोस् तपाईँलाई के चाहिन्छ मामा
6: भान्जा त्यसैले निधार यता ल्याउ टिका लगाइदिन्छु कम्प्युटर यतै किन अब धादिङ बेसी बिज बजारको प्रत्येक कम्प्युटर सेन्टरमा जस्तो सुविधा र सस्तो अन्त कहीँ पाइँदैन
8: जस्तो खोज्यो त्यस्तै कम्प्युटर पाइने बिग्रियो भने पनि बनाइदिने त्यसैले अन्त होइन कम्प्युटर चाहिए धादिङ बेसी बिज बजारको प्रत्येक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने
9: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रत्येक कम्प्युटर भएपछि सधैँ झुक्क फोन नम्बर 010-5509-17 97510-97778
10: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज